उच्चारण किया होया। भाई गुरदास जी बयान करते हैं, आप नारायण कलातार जग में परवरे हो। जिथे पटा ने यह गल कही उथे भाई गुरदास जी ने भी अनेक पौड़ियां उचार के यह गल कही। पर जद असी धन गुरु नानक साहब जी वाल देखते हाँ, अकाल पुरख का रूप होंदया होया भी धन गुरु नानक साहब ने कहा, कोई आखे पूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक विचार, कोई मैनु पूतना आखद, कोई बेताला आखद, कोई आखद ए ते नानक विचार, ते कोई कहंदा ए नानक दीवाना है। किसे नू कोई माड़ा कवे ते जिसनू माड़ा के है वो कदी नहीं कवेगा कि मैनू किसे ने माड़ा के। हर इंसान अपनी वड़ियाई चाहता है, पर धन गुरु नानक साहब गुणा दे खजाने वड्याइया दे खजाने, पर फिर भी गुरु हो के ए निम्रता शब्द विच आप बयान कर दे हैं। कोई मैनू पूतना कह रहा है, कोई बेताला कह रहा है, कोई बेचारा कह रहा है, कोई दीवाना कहंदा है कि नानक दीवाना है। धन गुरु नानक साहब कहंदे हैं, ऐ दुनिया दे लोको, हां मैं दीवाना हां, पर केड़ा दीवाना? ओ दीवाना जिनू परमेश्वर दे नाम नाल प्यार है। मैं परमेश्वर दे नाम दा दीवाना हां, पया दीवाना सहा का नानक बौराना। मैं अपने सहा अपने परमेश्वर उस अकाल पुरख दा दीवाना हां, हों हर बिन अवर ना जाना। मैं हरी तो बगैर होर किसे नू भी जानदा नहीं, होर किसे अगे मैं झुकदा नहीं, ते दीवाना भी मैं उसे हरी दा हां। पर एक गल कही तो दीवाना जानी जां पै दीवाना होए, असी ते उन्नू दीवाना आखदे हां जेड़ा रब दे डर विच रब दा मन विच डर रखे, रब दे पै विच जेड़ा रहिंदा है ओ दीवाना है। अते नाल कहा जेड़ा एकाकार कमाए, एक परमेश्वर दे हुक्म विच रवे, परमेश्वर दुख देवे पावे सुख देवे, जेड़ा उस परमेश्वर दी बंदगी करदा है, साहब जी कहंदे हैं असल विच ओ दीवाना है। ते नाले के है हुक्म पछाणे खसम का, खसम उस अल्लाह वाहेगुरु राम नू के है कि जेड़ा अपने खसम दा परमेश्वर दा हुक्म पछाणदा है, हुक्म मनदा है, अपनी सियानप नहीं वरतदा, असल विच ओ परमेश्वर दा दीवाना है। ते नाल ए भी कहा तो दीवाना जानिए जा साहिब तरे पिया, ओ दीवाना है जेड़ा अपने मालक नाल प्यार करदा है। मंदा जाने आप को आवर भला संसार, जेड़ा अपने आप नू मंदा समझे संसार नू चंगा समझे, असल विच ओ दीवाना है। अक्सर देखदे हैं लोक आप ते औगणा दे परे हैं,
अपने औगुण लुकाउंदे हन ते दूसरियां दी बुराई करदे हन। पर सतगुरु जी कहिंदे हन अपनियां बुराइयां दुनिया तू लुको सकदा है पर परमेश्वर तू नहीं, उस वाहेगुरु अल्लाह तू नहीं, क्योंकि वह सब कुछ जानता है। धन गुरु नानक साहब जिन्हें कदी किसी नु माड़ा नहीं किया। एक नगर विच गए, उस नगर दे लोकां ने धन गुरु नानक साहब नु आदर नहीं दिता, सगा पत्थर मारे। ते धन गुरु नानक साहब कहन लगे उन्हां लोकां वल देख के वसदे रहो। फिर दूसरे नगर गए, उत्थे दे लोकां ने बड़ा आदर मान कीता, बड़ी सेवा कीती। ते धन गुरु नानक साहब ने कहा तुसी उजड़ जाओ। ता सेवक ने पूछया महाराज जिन्हां पत्थर मारे उन्हां नूं कहा वसदे रहो, ते जिन्हां ने सेवा कीती उन्हां नूं कहा उजड़ जाओ, ये क्यों कहा? धन गुरु नानक साहब कहन लगे भाई जिन्हां पत्थर मारे जिन्हां दे मन विच बुराई है जेड़े नेकी नहीं करते असा उन्हां नूं कहा वसदे रहो इत्थे ही रहो, क्यों कि जे किधरे होर जावोगे उत्थे भी बुराई फैलावोगे। ते जिन्हां ने की कीती उन्हां नूं इस वास्ते कहा उजड़ जाओ, भाव कि होर जगह जाके वसो, तुसी नेकियां करदे हो तां कि तुहाडे वल देख के दूसरे लोग भी नेकियां करन। पत्थर मारन वालियां नूं बुरा नहीं कहा, सगा सतगुरां ने कहा ये लोग बुराई करते हैं, इन्हां दी मत इतनी है। ते जे धन गुरु नानक साहब नूं पुछिए महाराज तुहानूं लोग दीवाना कह रहे हैं, मस्ताना कह रहे हैं, ते साहब जी कहिंदे हन भाई सचमुच मैं दीवाना हाँ,

मन में सिर नीमा कर दे। जे तू अकल वाला है लोकां दे औगुण ना चतारिया कर, आपां दुनिया विच सकिया है कई बार जीव दूसरे दी निंदिया करके आप चंगा बनता है। फलाने विच आ औगुण है, वो आ माड़ा काम करता है, दूसरे दी निंदिया करके आप अकल वाला बनता है। फरीद जी कहिंदे नहीं बे तू अकल वाला नहीं, जे तू अकल वाला है अपनड़े गरीबान में सिर नीवा कर दे। अपने गरीबान विच जात मार, अपने हिरदे विच देख तू किड़ा गुनाह दा भरिया होया। जदों तू अपने गुनाह वल झाक मारेगा फिर लोकां दी निंदिया नहीं करेगा। जदों अपने औगुणा वल देखेगा

ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਵਿਰਲਾ ਆਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਵਿਰਲਾ ਆਇਆ। ਪਿਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀਂ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਦੇਖਣਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਮ ਲੈ ਕਰ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਨਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਇਨਾ ਲੋਹੇ ਸੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਹੇ ਸੇ ਸੋਇਨੇ ਕੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੂਲ ਰਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਪੀਛੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਮੂਲੇ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀ ਮੇਂ ਜੇ ਅਗਰ ਮਨੁਸ਼ ਕਾ ਜਾਮਾ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁਸ਼ ਕੇ ਜਾਮੇ ਸੇ ਬਹੁਮੂਲੇ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਜੋ ਆਜ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਮੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹਮਕੋ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਉਪਕਾਰ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਔਰ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਪਰਉਪਕਾਰ ਬੋਲਤੇ ਹੈ। ਉਪਕਾਰ ਕਾ ਭਾਵ ਹੈ ਭਲਾਈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦੂਸਰੋਂ ਕੀ ਭਲਾਈ। ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੋਂ ਕੀ ਭਲਾਈ ਵੋ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਸੋਚਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ ਉਹ ਦੂਸਰੋਂ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਪਿਤਰ ਬਾਣੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਵੋ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਕਿ ਹਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਪਲਾ ਪਲਾ ਕਹਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਹਮਨੇ ਭਲਾ ਬਨਣਾ ਹੈ, ਪਲਾ ਪਲਾ ਕਹਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਅੱਛਾ ਕਹਿਲਾਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਬਨਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਭਲਾ ਕਹਿਲਾਤੇ ਹੈ ਭਲਾ ਬਨਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਉਨਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭਲਾਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀ, ਅਛਿਆਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਮਨੇ ਅੱਛਾ ਬਨਣਾ ਹੈ ਕਹਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਣਾ ਭਲਾ ਬਨੋ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਭਲਾ ਕਹਾਤੇ ਨਾ ਰਹੋ।
परोपकारी दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों को जीवन दान देते हैं, दूसरों को जीवन दान देते हुए जो परमात्मा से बिछड़े हुए हैं उनको हरि की भक्ति में लगाकर उनका मिलाप करवाते हैं। धर्मी का जीवन ऐसा है जैसे भाई गुरदास जी ने एक और पितर शब्द में कहा, आप सहंदे दुख जग वरसाए, मैंने एक बात सुनी थी, स्कूल के विद्यार्थी अपने उस्ताद को बोले, हमें ये बताओ कि हमें अपने आप को धर्मी कहलाना है कि नहीं। उस्ताद ने बोला, सिर्फ अपने आप को धर्मी कहला कर क्या करोगे, देखना इस बात का जवाब जो है मैं आपको अभ्यास के रूप में दूंगा, प्रैक्टिकल के रूप में दूंगा। हो सकता है जे अगर मैंने बिना अभ्यास के आपको उत्तर दिया शायद आप ना समझ सकें। उन छात्राओं को जब स्कूल में छुट्टी दे दी गई वो अपने अपने घर जाने लगे। रास्ते में क्या देखा, जिस रास्ते से गुजरना था उस रास्ते में कंडे बिछे हुए थे, कांटे थे, रास्ता ठीक नहीं था। बोतान छात्रों ने क्या किया, अपना अपना रास्ता बनाकर वो रास्ते में आगे निकल गए, दूसरों को बताते रहे जिस रास्ते से हम निकले उस रास्ते के पीछे आप आ जाना। लेकिन एक छात्र पीछे रह गया। उस छात्र ने बोला, मैं तो अभी नहीं आऊंगा, देखना पहले मैं रास्ते को साफ करूंगा। जो रास्ते में कांटे बिछाए हुए हैं उनको हटाऊंगा, साफ करूंगा। दूसरे छात्र बोले, आप क्या करोगे, पीछे आ जाओ, पीछे रहकर क्या करोगे। वो छात्र बोला, ऐसे नहीं, जो मेरे पीछे आएंगे इस रास्ते पे आने वाले उनके लिए भी मैंने रास्ता बनाना है। देखना मैं तो आप जैसा रास्ता बनाकर चला जाऊंगा, लेकिन जो मेरे पीछे आएंगे उनका क्या होगा। वो छात्र बोले, आपने क्या लेना है, क्या आप सारा रास्ता साफ कर लोगे। वो फिर छात्र बोला, देखो जे मेरे से ये रास्ता साफ नहीं हुआ लेकिन मैं यहां पर ही रुक जाऊंगा, जो दूसरे रास्ते पे आने वाले आएंगे मेरे पीछे उनके साथ उनको लेकर रास्ता बनाऊंगा। उस्ताद बोला, धर्मी कहलाने से कोई धर्मी नहीं बनता, धर्मी बनने से धर्मी बनता है। देखो ये छात्र अपने लिए ही रास्ता नहीं बनाता, दूसरों के लिए भी रास्ता बनाता है।
धर्मी अपने जीवन के लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए भी जीता है। धर्मी अपने आप को तो दुख सह लेता है, लेकिन दूसरों को सुख बरसाता है। परोपकारी जो है, दूसरों के भलाई के लिए सदा ही तत्पर रहता है, अपने आप को त्याग में पाकर दूसरों को सुख देकर जीवन की युक्ति बताता है। धर्मी कहलाने से कोई धर्मी नहीं, धर्मी बनने से धर्मी है। अपने आप को सिख कहलाने से कोई सिख नहीं, सिख बनने से सिख है। अपने आप को सत्संगी कहलाने से कोई सत्संगी नहीं, सत्संगी बनने से सत्संगी है। अपने आप को साहिब का सेवक कहलाने से कोई सेवक नहीं, सेवक बनने से सेवक है। आज भाई गुरदास जी इसे ही पितर वचन के लिए एक पौड़ी में ऐसे बताते हैं, एक वृक्ष का प्रमाण देकर परोपकारी जनों के लिए एक वृक्ष का प्रमाण देकर हमें ऐसे समझाते हैं। कैसे समझा रहे हैं, आओ रचना पितर करिए। उनका ये पितर शब्द सब साथ में साथ लेकर गुरु की अपार कृपा से गायन करें।

एक वृक्ष का प्रमाण देकर परोपकारी जनों का स्वरूप प्रकट करते हैं। कहते देखना एक वृक्ष ऐसे दिखाई देता है जैसे उसका सिर नीचे और उसके पांव ऊपर हैं, और ऐसा वृक्ष आप दुख सहकर भी दूसरों को सुख बरसाता है। देखना दूसरों को फल देने के लिए दूसरों से बट्टे भी खाता है, ईंटों की बरखा होती है, पत्थरों की बरखा होती है, फल लेने वाले उसको पत्थर भी मारते हैं, वो पत्थर खाकर भी उनको फल देता है। फिर कहते हैं देखना उनको कणी छांव भी देता है, छांव देकर उनके अंदर आराम देकर उनके मन को परचाता है। यह भी देखा है उसको काटने वाले काट देते हैं, लेकिन उसी वृक्ष की लकड़ी का फटा दरिया से उनको पार भी करता है। पर ये बोलते हैं कोई कोई है ऐसा मनुष्य जामे में, कोई कोई ऐसा है जो गुरमुख है, जो अपने आप को दुखों में डालकर दूसरों के दुख अपनी झोली में पाकर दूसरों को सुख बरसाता है। ऐसे लगता है परोपकारी जन जगत में इसलिए आते हैं दूसरों को जो क्राह पे हुए हैं उनको राह पाने के लिए, जो अंधकार में फंसे हुए हैं उनको अंधकार से मुक्त कराने के लिए, दूसरों के दुख अपनी झोली में पाकर दूसरों को सुख बरसाने के लिए। लेकिन भाई गुरदास जी अगली पंक्ति में बोलते हैं गुरमुख सुख फल पाए। गुरुमुख का सुख फल क्या है? जिसकी प्राप्ति होती है आप गवाया, अपनी मैं को मारकर अपने आप को गवाते हैं लेकिन गिनाते नहीं।

अपने साहिब दे नाल जोड़ लिया। ओ सारिया नूं चंगे लगदे ने क्यों जो हर का प्यारा सो सभना।

पत्नी और पति का रिश्ता बड़ा गूढ़ा संबंध है, पर कई बार इन्हां विच भी प्यार नहीं रहिंदा, क्योंकि जिथे होमे और माया आ जावे

खून खार शराबी हाथियों नाल लड़न की समर्था रखन लगे। ये शक्ति सारी खंडे बाटे दे अमृत, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह

मान दे बहर न पावे कछु उपाव मुक्त का कर रहे। गुरु जी कहते हैं कुछ उपा कर लै। गुरबाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी है, ये सारे भगतों की बाणी, संतों की बाणी, गुरुआं की बाणी, भगत रविदास, भगत कबीर, बाबा फरीद जी, सारिया की बाणी गुरु महाराज ने एकत्र की है। ये सारे संतां भगतां दे सतपुरशां दे वचन हैं, गुरुआं दे वचन जो हैं। सो मानस दे बाहर ना पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रहे। कहिंदे कोई अपना उपा कर ले, कोई जतन कर ले। ये जे तैनू वक्त मिलिया, बहुत गोल्डन चांस मिलिया है, बल्कि बहुत ही अमोलक समां मिलिया है। इस समय दे विच सुनिया सी जे ये वक्त हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, तो मनुखा जन्म दे विच ही हो सकता है। 84 लाख जून दे विच, किसी जून दे विच ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होंदा, ना ही गुरु मिलता है, ना ही सत्संगत मिलती है, ना ही परमेश्वर का नाम मिलता है, ना ही इस दे अंदर कुंडलनी जागृत हो सकती है। बोल सतनाम श्री वाहे गुरु। तीन तरह की कृपा होंदी है, तीन तरह की मेहर होंदी है। एक तो अकाल पुरख की मेहर है, अकाल पुरख की मेहर है। अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर जो सृष्टि करता है, उसकी क्या मेहर है, सानू उसने ये अमोलक जन्म दे देता है। बोलो सतनाम श्री वाहे गुरु। ब्रेन दे देता है, दिमाग दे देता है, कितना तेज दिमाग है, कितना कुछ सोचता है। इस दे विच अपने सात संगत के ये दिमाग जो ये सुंदर घाड़त है, ये सुंदर रचना है, शरीर की रचना है, सृष्टि की रचना है, जां फिर ये अमोलक नेत्र अखां दे दित्तियां हन, हथ पैर दे दते हैं, जवान दे दित्ती है, कन्नां विच सुण दी शक्ति दे दित्ती है, ये सब अकाल पुरख की कृपा है। बोलो सतनाम श्री वाहे गुरु। इस जीव दे उते अकाल पुरख की कृपा हुई है जो ये मनुखा जन्म दिता है। इस नूं देवते भी तरसदे हन जो साडे उते अकाल पुरख ने यह कृपा की है, मेहर की है। गुरु जी कहिंदे ने रामैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। रामैया के गुण चेत प्राणी, उस परमात्मा ने गुणा नूं कुछ याद कर, अकिरत घाणा बन, कुछ याद कर, चेते कर। रामैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। ते क्या तेरी जो जड़ है, कित्थों तू पैदा होया है, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, की दिस रहा है, क्या नजर आ रहा है, तेरा कितना सुंदर शरीर उस वाहिगुरु परमेश्वर ने बनाया है। थोड़ा जा फर्क पै जाए देख लो कितना औखा हो जाता है। डॉक्टरों को भजे फिरदे असीं, हस्पतालों च भजे फिरदे ही, अखां च थोड़ा जा फर्क पै जाता, कन्नां च सुन दी, दंदा दी, होर सास संद कितनी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, कितना औखा हो जाता है, जिसने सारा शरीर दिता है। रामैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सिवार सिगारिया। देखो पंजे तत्व उसने किवें इकट्ठे किए हैं, पंजा तत्वों का कितना सुंदर पुतला तैयार किया है, जिस दे विच ए रूप आई है, आत्मा पाई है। बोलो सतनाम श्री वाहे गुरु। साहिब का फरमाया जियो देही विच आए पाया जो सोस दा हुक्म हुंदा है। इस रूह नूं आत्मा नूं ए पंज तत्त दा पुतला, पंज तत्तां दा ए घर, पंज तत्तां दी गड्डी, पंज तत्तां दा ए रथ शरीर ए प्राप्त होया। ए अकाल पुरख दी कृपा है, अकाल पुरख दी मेहर है। कितना दिमाग कम करदा है, किवें कम कर रहा है, ए माता पिता दी कृपा तां नहीं है, ये तो अकाल पुरख की कृपा है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। शरीर की रचना तो उसने की थी। सो अकाल पुरख वाहेगुरु की कृपा है जो उसने सानू ये हाथ पैर दे दते हैं, अखा दे दतिया हैं, ये शरीर दे दता है, शरीर दे विच चलन की शक्ति पा दती है, ये रूह नू जड़ा है ये शरीर बख्श दता है। ये अकाल पुरख की कृपा है, ये वाहेगुरु परमेश्वर की कृपा है, इस विच अपनी कोई ताकत नहीं है। ते दूसरी कृपा जीव दी मनुख दी अपने आप ते हुंदी है कि यह प्रभु दा परमेश्वर दा नाम जपे, सत्संगत करे, सेवा करे। बोलो सतनाम श्री वाहे गुरु। अपने आप ते कृपा करे, कुछ मेहनत करे, उद्यम करेंदा ज्यू तू कमाव दिया सुख पुंच, ध्याय दिया तू प्रभु में नानक उतरी चिंत। यह अपने आप ते कृपा करे, संगत विच जावे, वैसे यह भी कृपा वाहेगुरु परमेश्वर दी है, संगत विच जो सत्संगत दी प्राप्ति है। फिर इसने क्या कृपा करनी है, गुरु दे वचना नूं कमाउणा है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। अपने आप ते कृपा करनी है। दूसरी कृपा
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਨ ਚ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਕਿਰਤ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੰਦਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੋ।

नाम तो बिना भाई तेरा किवें छुटकारा हो सकता है, ते नाम मिलदा कितों है आख्या जपन वालियां की संगत विच तेनू नाम मिठा लगन लग जाएगा। जपन वालियां दी संगत विच नाम तेरा आधार हो जाएगा, साच नाम आधार। जिन्हां नू नाम दा आधार हो गया फिर उदियां सारियां ही भुखां दूर हो जांदियां हन। उचारण करो श्री वाहिगुरु। इस लई हजूर बख्शिश करदे हन कि ए गुरु दी शरण विचों मिल सकदा। जैसे मंदिर में बल हरना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल नाहे टिकावे। कुंभ कहिंदियां ने घड़े नू, आख्या जिस तरह जल कुंभ तो बिना टिक नहीं सकदा, आ बर्तन तो बिना जल किवें टिकाओगी भाई। वो जल बर्तन तो बिना बिखर जांदा है, जाया हो जांदा है। ते जे तैनू ही सतसंग नहीं प्राप्त होया, गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई, तो तेरा मनुष्या जन्म भी इसी तरह रुड़ जाएगा। कि कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु की शरण विचों तेनू लोक परलोक दे सुख मिलनगे।

अकी चढ़ाओ चढ़ंदा। भगत कबीर जी नू सेवका ने पूछया सी, महाराज तुसी स्वर्ग भी निंद दिते ते कह रहे हो भाई पूर्ण गुरु

मनुख तू चेते कर माता के उदर में प्रतिपाल करे। सो क्यों मनो विशारिये, मनो क्यों विशारिये एवड दाता जो अग्न में आहार पहुंचावे। ओ वेला याद कर शेर तले पांव ऊपरे वसंदो कोहतड़े थाए। नानक सो तनी क्यों विशारिये उदरे जिसके दाए। ओ समा चेते कर जदों तू पुठा लटकिया होया सी ते कितनी माड़ी जगह ते कोहथड़े थां ते तू लटक रिया सैं जिथों मल मूत्र लंघ रिया सी। उस वेले तू अरदास करदा सैं हे निरंकार मैनू इस कुंभी नरक विचों कढ़ मैं तेरा सिवरन करांगा तेरा नाम जपांगा। ओए तैनू क्यों भुल गया ओ वेला तू क्या सी मैं अमृत वेले गुरबाणी गासा सत संगत बह के हर नाम दिया सा तू भुल गया वह दे पै गए हनेरे। ओए सुन मन गाफल पल पल करके तेरा जीवन घटता जा रहा है।

हजूर कहने लगे, क्यों भाई क्यों घबराया है, की गल हुई? कहने लगा, सचे पातशाह ये पता नहीं की खेड वरती है, ते शहद विच कीड़े कितों आ गए, ते बिल्कुल ताजा है। जदों कि एक गल खास ध्यान देने वाली है कि शहद जेड़ा है एक ऐसा पदार्थ है जेड़ा शुद्ध होवे, उहदे विच भावे जिन्ने चिर दा मर्जी रखिया होया होवे कीड़े नहीं पै सकते। पर ऐसे एक अजीब कौतक वरतिया, इहदियां नजरां ने एक वेखिया, उहदे विच कीड़े ही कीड़े भरे पए। कहण लगा, सचे पातशाह ये कीड़े कित्थों आ गए? हजूर मुस्कराए, कहण लगे, भाई तू ते कहिंदा सी बड़ा निर्मल शहद है, बड़ा स्वच्छ शहद है, पर इहदे तां कीड़े भरे पए। पसीना आ गया, कंब गया, चरण पकड़ ले, सचे पातशाह इस खेड़ तों मैं अणजाण हां, ये किवें भाणा वरतिया? पातशाह बख्श लो। हजूर कहण लगे, गुरमुखा जिस वेले मंगया सी उस वेले ते दिता कोई नहीं, बड़े तरले पाए, बड़े वास्ते पाए, उस वेले ते दिता कोई ना, हुण की लैण वास्ते आए? जे कि थोड़ा जा शहद उथे दे दिंदा उस बुजुर्ग नूं तां मैनूं पहुंच जाणा सी। ओ सेवा मेरी सी, किसे लाचार दी सेवा, किसे बेसहारे दी सेवा, ओ मेरी सेवा है, ओ गुरु की सेवा है। ए सेवा इस भावना नाल कीती जावे तां गुरु प्रवान करदा है, क्योंकि गुरु सारी सृष्टि नाल प्यार करदा, गुरु हर एक जीव नाल प्यार करदा है, ओ ते हर एक नूं जीदान दिंदा है। ऐसा है मेरा सतगुरु जो मनुख मात्र नूं प्रेरणा दे रहे ने, भाई सेवा करके अपना जीवन सफल कर ले, तेरा मन टिक जाएगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, और यह लोक सुखिए परलोक सुहेले हो जाएंगे। कह

लाल खोई है, फिर ए अवसर कद लहां। गुरु की बाणी कह रही है कि ए मनुख तू अमोलक हीरे लाला तो भी महंगे अपने श्वास धंधियां विच बिता के माया नू इकत्र करन लई तू सारे ए लाल अजाई गवाई आउना है। ए दुनिया दे पदार्थ दुनिया दे सुख ए टुटे हुए कच दी दियाई हन जिना कोल धन दौलत दुनिया दे सुख हन आवेख जाके ओ कितने चिंतातुर हन के किते कोई चोर चुरा ना लवे किते कोई होर ना लै जावे किते कोई होर मुसीबत ना पै जावे। जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहंदे आ जिस घर विच बहुती माया है उत्थे बहुतियां चिंतावां दा निवास है क्योंकि डर है कोई चोरी ना करके लै जाए रात नूं नींद नहीं। सद भावना रखण वाला उस मालक दे हुक्म विच रहण वाला एक गरीब तां अपनी नींदर सौंदा है अपनी उठदा है पर धनवान बंदे नूं नींद नहीं पैंदी भई मते कोई चुरा के ही ना लै जावे। उच्चारण करो श्री आख्या ऐसे धन तो तैं की खटिया काच बादरे लाल खोई है तू अमोलक श्वासा दे लाल दे के ते दुनियावी पत्थरां नू खरीद के अपने आप नू बड़ा धनवान समझना है बड़ा बलवान समझना है भाई मेरे वर्गा कोई नहीं। पर याद रख जदों प्राण पंखेरू उड़नगे एक छिन विच सब कुछ पराया हो जाएगा। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। पुरातन समय जो शाहूकार हुंदे सन ओ लक दे नाल सोने दी जजीर पा के रखदे सन। कबीर जी देख रहे सन जदों एक धनवान गुजर गया शरीर छड गया ते जदों लकड़ां ते पान लगे ना ते घर वालियां दा ध्यान उस जंजीर ते पै गया।

मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। मूर्ख बंदा माया दी खातर दिन रात नठिया फिरदा है, बई तू संगत विच नहीं आंदा जी, मेरा कारोबार इन्ना है, मेरे कोल टाइम ही नहीं होंदा, मेरा काम इन्ना है। ओ पलिया, जदों भुख नाल मरदा सी उदों तेनूं गुरु चेते सी, उदों ते दोनों वक्त गुरु घर आके अरदासां करदा सी। हुण तेरा कारोबार

को पायो तिन तिन अपनो राह चलायो तिन तिन अपनो राह चलायो। साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज बचित्र नाटक दे अंदर अपनी पावन गुरबाणी ते अकाल पुरख दे सामने होया होया प्रोमिस गरीब नवाज सचे पातशाह जी दे सामने कीता होया वचन भई मेरे अकाल पुरख नाल मेरी केड़ी केड़ी गलबात होई ता मैं संसार दे अंदर अवतार तारिया। गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह साहिब सचे पातशाह अपने पहले जन्म दी हिस्ट्री दस रहे ने बचित्र नाटक दे अंदर ते आरंभ करदे हन भी जदों संसार दी उत्पत्ति होई किन्ने राजे महाराजे आए किन्ना वंश विचों जन्म लैंदिया होया साडी ए सोडी वंश उत्पन्न होई। गरीब नवाज सचे पातशाह ने कथन कीता

पहने कन विचों मैल कढ़ी ते मद ते कीटब नाम दे राजे जिहड़े राक्षस सन उन्हां दा जन्म होया। दूजे कन चो मैल कढ़ी भी सृष्टि बन गई। प्रथम कान ते मैल निकारा ताते मद कीटब तन धारा। दूतिया कान ते मैल निकारी ताते भई सृष्टि सब तारी। कहंदे भी ए मद ते कीटब दा युद्ध बड़ा समा हुंदा रहा। लड़दे रहे दोनों बली सन। आखिरकार युद्ध लड़दिया दोनों दे दोनों जड़े हन मौत दे घाट उतर गए, मर गए। इन्हां दे शरीर दी जड़ी आ चर्बी सी ना पानी अंदर डिग गई। पानी अंदर डिगण दे नाल मिज जड़ी सी ना मेदा पानी विच डिगया। गुरु गोबिंद सिंह साहिब सचे पातशाह महाराज कहंदे वी अकाल पुरख बाच ओह लिखदे ने भई ए मेदा डिगण दे नाल ए बॉडी पानी दे अंदर डिगण दे नाल उस दिन तो धरती बनी। इस दा नाम मेदनी रखिया गया।

संसार चो राज करदिया होया राम चंद्र लक्ष्मण शत्रु ते भरत ए चारे दे चारे चले गए ते सीता दी कुखों दो राजिया ने जन्म लिया सी सुत बहुर भय दोए राजा राज पाठ उन्हीं को साजा उन्हां दा नाम सी लव ते कुशु।

से बासन तने गर्ख की न तहाई नवासन घने बर्ख की न तहाई नवासन लवी जित गए ते कुशी हार गए कुशी जड़े ने कांशी विच आगे बह गए कुशियां ने कांशी दे विच आगे वेद याद कीते वेदां दा पाठ सुन सुन के पढ़ पढ़ के ए फिर कांशी विचों जदों महान पंडित बन गए ना इन्हां दा नाम पै गया बेदी ते लवी वंश वालियां दा नाम पै गया सोढ़ी ए सोढ़ी ते बेदी बेदी वंश चों गुरु नानक देव जी महाराज ने अवतार धारिया ते सोढ़ी वंश विचों साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अवतार धारिया कहिंदे वी बेदियां दा ते सोढ़ियां दा मिलाप हो गया बड़े पंडित बन गए महान विद्वान इन्होंने आके वेद दियां रिचां उपांगां उच्चारण कीतियां इस राज दे अंदर ते लवी बड़ा प्रसन्न होया कहन लगा तू कौन है कहिंदा मैं तेरा भरा जिसने मार के भजाया सी तू मार के भजाया सी ना मैं ओ हां कहन लगा मैं तेरे वेदां नूं सुन के बड़ा प्रसन्न होया तू ब्रह्म दी ज्ञानता प्राप्त कर चुका तैनू मैं राज भाग सौंप दिता अज तो ए साडा राज भाग तेरे हवाले कर दिता जिन बेद पठियो सो बेदी कहायो तैन धर्म का कर्म नीके चलायो ते वेद पढ़न दे नाल ते सुनन दे नाल सारे दा सारा राज भाग महाराज बेदी ने बेदियां नूं दे दिता लवियां ने ते बेदी कहन लगे वी महाराज तुसी वड्डे भराता हो सानू हुण तुसी राज दे दिता ए साडे सिर उपर एक करजा है ते असी ए राज तुहाडे वापस देना ही देना तुहाडे हवाले तुहाडी अमानत करनी ही करनी है फिर कदों करिए ते बेदी कहन लगे भाई पहले जन्म ते असी आवांगे गुरु नानक दा रूप धारण करके साडी वंश विच उत्पन्न होणगे पहला दूजा तीजा वंश जदों चल पाएगा ना ते चौथे जन्म दे अंदर जदों गुरु होवांगे गुरु रामदास दे नाम दे नाल तेरा प्रकाश होएगा लाहौर शहर दे अंदर तेरा नाम होएगा रामदास चौथे जन्म विच आके तैनू असी दित्ती होई अमानत वापस कर देंगे तैनू गुरु थापना कर देंगे गुरु थाप के तैनू संसार दे विच दित्ती होई अमानत तेरे हवाले कर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बड़ी वड्डी इह विचित्र नाटक है बड़ी महान रचना समय दे अंदर पूरी नहीं होंदी इह जिहड़ी वार्ता दो ढाई घंटे दी लम्मी वार्ता है इस करके साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज कहिंदे इत्थों तक अकाल पुरख महाराज दे चरणां दे विच बिणे होई उन्हां दे सामने ए वाक होया ते अकाल पुरख ने सारी दी सारी वार्ता सुना दित्ती भई हुण तैनू संसार विच अवतार लैणा पैणा ना तू पत्थरां नूं पूजक होएगा कहो प्रभु सुपाख हो मैं महाराज अकाल पुरख नूं कहा की कहा किसू ना कान रख हो किसू ना भेख बीज हो अलेख बीज बीज हो मैं किसे दे भेख विच नहीं भेजांगा पत्थरां दी पूजा नहीं करांगा महाराज तेरे पंथ नूं तेरे वंश नूं संसार विच उत्पन्न करांगा उसका नाम होएगा खालसा ए गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वाक कीता ए जिहड़ा नाराज छंद जिहड़ा लिखिया होया आप जी दे पास गरीब नवाज साहिब सच्चे पातशाह महाराज कहिंदे ए अकाल पुरख दे सामने एक मैं प्रोमिस कीता ओह मैं पूरा कर रहा ते खालसा बना रहा खालसा संपूर्ण होके पत्थरां दी पूजा नहीं करेगा जटा जड़ी है सिर ते नहीं बनाएगा किसे अकाल पुरख महाराज नूं छड़ के किसे होर दी पूजा विच नहीं रुझेगा ए मेरे खालसे दे प्रति मेरी एक बिनय है जिवें मैं अपने अकाल पुरख दे चरणां च एक बिनय कीती सी लिख दें।